हार के वो जा रहा है कोई शबगम गुजार, वीरा है मैं कदा खुम सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए द।

0: SBS South Asian.
1: Dikiro.

0: step a two. Dancing far and style.
1: Slow down, boys.

इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के औकात में अपनी पसंद के पॉडकास्ट सुनिए। आप हमें पैगामात इरसाल कर सकते हैं जिसमें आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद आ रहा है, कैसी मौसीकी है जो आप नशरियात में सुनना चाहते हैं, वो कौन से मौजूआत हैं जिनका अहाता SBS उर्दू को करना चाहिए, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मुनफरद टैलेंट मौजूद है, आप किसी ख़ास खिदमात के शोबे से वाबस्ता हैं, या कोई ऐसा मौजू है जो आप SBS उर्दू के साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये सब पैगामात आप हमें इरसाल कर सकते हैं SBS उर्दू के फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही हम आपको लिए चलते हैं, नशरियात में शामिल करते हैं, एक गीत आपको सुनवाते हैं, कुरतुल ऐन बलोच और आतिफ असलम की आवाज़ में दीवाना बना रखा है।

0: लोग जल्दी वर्कफोर्स में शामिल होने के काबिल हो सकेंगे। पाके हुकूमत का कहना है कि वो अगले 4 साल में ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन के निजाम की शफाफियत और उसको मजबूत बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करेगी। तकरीबन 74.2 मिलियन डॉलर वीजा प्रोटेक्शन निजाम को बेहतर बनाने और उसके गलत इस्तेमाल से निमटने के लिए वफ किए गए हैं। वफाकी और फैमिली अदालतों में मेरिट और अदालती जायजा निजाम को भी मजबूत बनाया जा रहा है। महकमा दाखिला तलबा की वीजा दरखास्तों की जांच पड़ताल के निजाम को शफाफ बनाने, उसे और बेहतर करने और इसमें सख्ती लाने के लिए 20 मिलियन डॉलर की इजाफी फंडिंग दी जा रही है। फीका के पीटर गॉकस कहते हैं कि तलबा और तालबात की वीजा दरखास्तों की स्क्रूटनी में इजाफा करने से यूनिवर्सिटी में दाखिलों में मजीद कमी आने का खदशा है।
1: ऑनशोर एंड ऑफशोर वीजा एप्लीकेशंस फॉर स्टूडेंट्स हेवीली रिस्ट्रिक्टेड एट द मोमेंट। एडिंग फर्दर रिस्ट्रिक्शंस टू दिस अंडरमाइंस आवर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन sector that was once in the top 5 export industries that we had and ultimately has the danger of contributing to a brain drain. If we're looking for the best and brightest in workers, why aren't we looking for the best and brightest in students, and why are those restrictions necessary in the broader context of the economy seeking smart people to contribute?
0: National Disability Insurance Scheme mein katoti karke अगले 4 साल में तकरीबन 38 बिलियन डॉलर की बचत की जाएगी। माजूरी की अहलियत के तायुन के लिए मियारी जायजा सख्त किया जाएगा। अंदाजा है कि इसके नतीजे में तकरीबन 1,60,000 अफराद इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क चीफ ऑफ पॉलिसी एडवोकेसी और प्रोग्राम्स चेरी बॉयलेस इस कटौती को परेशान कुन करार देती हैं।
2: I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well.
0: इसके अलावा NDIS से बाहर foundational support फराहम करने के लिए 5 साल में 5 साल के लिए 3 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। ये रकम नेशनल काबिना के मुहिदे के मुताबिक रियासतों और इलाकों की जानिब से भी फराहम की जाएगी। नेशनल एथनिक डिसेबिलिटी अलायंस के कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव लॉरक्सन का कहना है कि NDIS में फ्रॉड से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम खुसूसन कसीरुल सकाफती कम्युनिटीज के लिए खुशाइंद हैं।
3: We recognize the government's focus on sustainability and integrity in the NDIS. Culturally and linguistically diverse participants are already more likely to face system navigation barriers and limited access to advocacy. So changes to eligibility or funding could increase the risk of confusion, disengagement and even the spread of misinformation.
0: माजूरी समुदाय के एक मावर्दी प्रोग्राम थ्राइविंग किड्स का पहले ही ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए हुकूमत अगले 5 साल में 2 बिलियन डॉलर खर्च करेगी। क्लोजिंग द गैप के तहत फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज के लिए भी 1.2 बिलियन डॉलर की रकम मुख्तस की जा रही है। मुकामी ऑस्ट्रेलियन बच्चों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े कौमी गैर सरकारी इदारे की चीफ एग्जीक्यूटिव कैथरीन लिडल का कहना है कि वो चाहती थी कि इस बजट में मुकामी ऑस्ट्रेलियन बच्चों की मामलत के लिए मजीद इकदाम किए जाएं।
4: I think this budget was flagged as the budget for generation fairness for Aboriginal children and families. It's the budget of missed opportunity.
0: खजांची जिम चालमर्स ने टैक्स निजाम में तब्दीलियों का भी ऐलान किया।
5: Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation. To restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
0: Opposition Jamaat Liberal Party ke Mr. Wilson ne tax nizam mein tabdiliyon ko nakafi qarar diya.
6: It's absolutely a challenge for young Australians to get ahead. The biggest tax young Australians pay is income tax. Yet every time the government has done anything on that, it's been wiped out by Jim Chalmers' active inflation agenda. The rules currently written make sure that young Australians are pushed further behind.
0: Abhi aap Australia ke wafaqi budget 2026-27 par kai halkon ki janib se aane wale radd amal par mabni SBS News ki Peggy Giacomolis ka taiyar karda feature sun rahe the, jise Urdu samayin ke liye Rehan Albi ne pesh kiya.
7: SBS Urdu, SBS South Asia.

0: इन पर।
1: जी सामईन, बजट में क्या कुछ तब्दील हुआ है और क्या कुछ नए टैक्स और नई असलाहत नाफिज की गई हैं, इस हवाले से रिपोर्ट आप सुन रहे थे रेहान अलवी के पॉडकास्ट में। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं मौसीकी की जानिब, आपको सुनवाते हैं स्ट्रिंग्स का नैना।

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: डांसर के तौर पर अपना मकाम बना चुके हैं, लेकिन इस फैसले पर इब्तदा में उन्हें शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा और अब भी उन्हें कई चैलेंजेस दरपेश हैं। दूसरी जानिब ईद कुर्बान करीब आते ही बहुत से पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मिशन कम कीमत में अच्छा जानवर घर लाने का होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि जानवर खूबसूरत भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। ऐसे में मुल्क भर में मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, जहां खरीदारों का रश बढ़ रहा है, जबकि व्यापारी खरीदारों के दरमियान भावताव भी शुरू कर चुके हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है, जहां 2 लाख से ज़ायद जानवरों की खरीदो फरोख्त का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दोनों कहानियों की तफसील सुनिए पाकिस्तान सोशल रिपोर्ट में एहसान खान की ज़बानी।
4: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
5: SBS उर्दू से मैं हूं एहसान खान। पाकिस्तानी मुआशरे में जहां मर्दों के खुलेआम डांस करने को भी मायूब समझा जाता है, वहीं एक ऐसा नौजवान भी है जिसने बेली डांसर बनने का इंतखाब किया। नौजवान को अपने इस फैसले पर शदीद रद्द अमल का सामना भी करना पड़ा। खानदान वालों ने ताने दिए तो रिश्तेदारों ने तंज के तीर चलाए, दोस्तों ने तरह तरह के अलकाबात से नवाजा। ताहम अपनी धुन में मगन ये नौजवान माशरती रुकावटों को अबूर करता हुआ पाकिस्तान का न सिर्फ पहला मेल बेली डांसर बन गया, बल्कि अपनी एक मुनफरिद पहचान भी बना ली। यूशा हुसैन अब पाकिस्तान में पहले मेल डांसर के तौर पर अपना मुकाम बना चुके हैं, ताहम अब भी उन्हें कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अपनी मुनफरिद मगर दिलचस्प कहानी से मुतालिक याद करते हुए यूशा हुसैन ने बताया कि इब्तिदा में तो मुझे ये तक कहा गया कि तुम लड़के होकर ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई मिरासी हो, साथ ही तरह तरह के अलकाबात से भी नवाजा गया।
6: हमारे यहाँ लाइक देखा जाए तो बाहर के लोग हों, आपके आसपास के लोग हों और हमारे रिलेटिव्स हों, लाइक बहुत से ऐसे बहुत अलग अलग हमको लोग मिलते हैं, हमें एक स्पेसिफिक वर्ड चिपका देते हैं, हमारे कंधे पे लाकर रख देते हैं, तुम तो मिरासी हो। वाई भाई, क्यों मिरासी हो? अगर एक आर्टिस्ट कुछ सीख रहा है, कुछ करना चाह रहा है प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, तो आप उसको एक स्पेसिफिक दे दोगे मिरासी? नहीं भाई, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं। कुछ बंदा अगर सीख रहा है तो उनके टीचर बेहतरीन उनको मिलते हैं, अब उनको मिरासी ऐसे नहीं बोल सकते हो।
5: बैली डांसर बनने के सफर के हवाले से उन्होंने बताया कि इस फील्ड में आने का कोई खास प्लान नहीं था, बैकग्राउंड डांसर तो बनना ही था, लेकिन बैली डांस करूंगा ये कभी सोचा नहीं था।
6: एक चाहत थी, लाइक मेरी ये चाहत थी, नहीं भी थी, मैं इससे इंडस्ट्री में आया था, तो लाइक मेरी माइंड में ये था कि यार मैं बैकग्राउंड डांसर बन जाऊंगा, पीछे खड़े मैं काम कर लूंगा, पैसा कमा लूंगा। तो पता नहीं दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि मैं ये वाली डांस फॉर्म चुन लूंगा तो लाइक मैं शायद मशहूर हो जाऊंगा। मेरे माइंड में था भी नहीं, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी भी नहीं कि चलो ओके मैं ये डांस फॉर्म कर लूंगा तो लाइक मुझे बहुत से लोग पकड़ लेंगे, मेरे इंटरव्यू करेंगे, तो लाइक मुझे कुछ मेरे पास लाइनअप होगी और शोहरत मिल जाएगी, फेमस हो जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा। माइंड में तो वायरल होने का उस पर उस टाइम पता भी नहीं था। काम करना स्टार्ट किया तो बाद में पता चला कि यार पहाड़ खोदने के बराबर मेरा काम था ये। तो जब करता रहा तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, अपने काम पे बुलाया, उनके साथ काम भी किया, कमर्शियल्स किए।
5: मुआशरती रुकावटों को अबूर करके आज अपनी पहचान बनाने वाले बेली डांसर के मुताबिक जब उन्हें पहली मरतबा काम करने की पेशकश हुई और शहर में उनके पोस्टर लगे तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई।
6: ऐसे बहुत से बहुत कम हुआ है, लेकिन जब हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश था। जब फर्स्ट टाइम मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई थी एंड आई वाज लाइक ओके क्या मैं करूँगा, मैं उनका कमर्शियल मैंने कमर्शियल किया उनका, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस उनके साथ, मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके, एक्सपीरियंस भी शेयर हुआ। और जब एक पोस्टर लगा यूशा का एक जगह पे, तो वो एक ना एक मोमेंट एक बंदे की कैप्चर हो जाती है कि हाँ यार बंदे ने कुछ कर लिया।
5: यूशा हुसैन के मुताबिक उनका ये सफर मुश्किलात से भरपूर था, खानदान, स्कूल के दोस्तों, रिश्तेदारों की जाने से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिली, सब लोग ही तंज करते रहे, वालिद और भाई भी शुरू में काफी नाराज थे।
6: बचपन से तो बहुत से इश्यूज वगैरह भी हुए हैं, फैमिली की तरफ से भी, रिलेटिव्स की तरफ से भी, स्कूल वालों की तरफ से भी, और बहुत सी जगहों पे टॉन्ट वगैरह भी बोले, बहुत अजीब अजीब से वर्ड भी बोले गए, क्या है, जनखा है, खुसरा है, चक्का है, व्हाटएवर, बहुत से स्पेसिफिक जो अलग अलग वर्ड्स तो बोले गए। तो बस फैमिली की तरफ से थोड़े से इश्यूज हुए थे, तो बचपन में डैडी ने बहुत डांटा भी है, मेरे हाथ में चोट भी लगी थी, छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था,

0: डैडी ने बहुत ज्यादा मारा भी था।
1: बैली डांसर के मुताबिक मेरी ड्रेसिंग देखकर लोग बातें करते थे, ताहम वही लोग जब परफॉर्मेंस देखते तो दाद दिए बगैर नहीं रह सके।
0: KG1 और KG2 तो मैं उस टाइम से पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, मैडम रानी हैं, उनकी मूवीज़ देख के, उनके कुछ गाने देख के, माधुरी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ माधुरी का, उनके गाने देखना, उनकी चीज़ें देखना, उनके मूव, उनके अलाइनमेंट, उनकी नज़ाकत, और वही चीज़ें फिर से अडॉप्ट करी लोगों को दिखाने के लिए एज ए परफॉर्मर। तो लाइक जब अटैम्प किया इन सब चीज़ों को तो लोगों ने टॉन्ट भी किया कि यार ये सब चीज़ें क्या हैं, लड़का होकर लाइक बैली डांस ही क्यों, कथक ही क्यों, और कोई फॉर्म नहीं है, भांड बनना है क्यों भाई, एक लड़का अगर डांस कर तो उसको गलत नजर से क्यों देखा जा रहा है, लाइक फ्रॉक्स वगैरह बनवाए तो यानी बहुत से लोगों ने उसको अलग नजर से देखा, लड़का घाघरा क्यों पहना हुआ है, फ्रॉक क्यों पहना हुआ है, लड़का क्रॉप टॉप क्यों पहना हुआ है, ये लड़का है अभी कि नहीं है, ये क्या चीज है, इसको अलग तरीके से देखना। लेकिन जब परफॉर्मेंस करने खड़ा होता था वही उनकी ना एक शट कॉल बन गया, नहीं यार ये बंदा कुछ तो करता है।
1: बैली डांसर के मुताबिक उन्हें खानदान और दोस्तों ही नहीं बल्कि कुछ उस्तादों ने भी जज करने की कोशिश की और उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज कहे।
0: 2024 में जब हमारे ऑडिशन वगैरह हुए तो टीचर्स को बोला मैं बैली डांस करूंगा, तो जब बैली डांस वगैरह कर लिया तो मेरे टीचर दूसरे टीचर से मुझे थोड़ा सा जज करके बोला कि तुमने भी बैली डांसिंग की क्यों किया, ये कॉमी लूथ वाली तुमने प्रेजेंटेशन ना अपने कॉमी लूथ वाली कर दी। एंड आई वाज लाइक हैं बैली डांस कहां, कॉमी लूथ कहां, आउट ऑफ द कनेक्शन बात करके किसी को डिग्रेड करना, डीमोटिवेट करना कि वाय।
1: पहली बैली डांस परफॉर्मेंस को याद करते हुए यूषा ने बताया कि उस वक्त काफी घबराहट महसूस कर रहा था, ताहम साथ ही सैकड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करने की खुशी भी हुई।
0: टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो लाइक सीन इज के मैं थोड़ी सी शिवरिंग थी बॉडी के अंदर, थोड़ी घबराहट हो रही थी, सांस ऊपर नीचे हुआ हुआ था, नॉन स्टॉप में टीचर के गले लग रहा था, उनका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मेरे टीचर वॉज लाइक कि नहीं जाओ आग लगा दो स्टेज पे, मैं कहा चले ओके करते हैं इंशाल्लाह, फिर जा गया स्टेज पे, बट आई डोंट नो थोड़ा सा उस टाइम तो जब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लेकिन अचानक जब स्पॉट खुलता है ना आपके ऊपर और हमारे सामने हजारों की तादाद में ऑडियंस होती है तो एक बूस्ट मिल जाता है कि यार आई थिंक कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करी थी मैं क्या बोल बाखुदा मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, और इतनी सारी फ्लैश लाइट अपने लिए देख के ना मैं थोड़ा सा लाइक हुई, खुशी भी हुई, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, मैं अगर कोई चीज़ कर रहा हूँ तो उसको गलत वे में नहीं देख रहे हैं, उसको अच्छे वे में देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
1: पाकिस्तानी बैली डांसर यूषा हुसैन भारत के मेल बैली डांसर ईशान हिलाल से काफी इंस्पायर, जबकि भारतीय बैली डांसर महर मलिक के मद्दा भी हैं।
0: यानी इंडिया के फर्स्ट मेल बैली डांसर हैं ईशान हिलाल, तो मैं उनको देख बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। लाइक उनकी थोड़ी सी जर्नी आई डोंट नो मेरी जैसी है नहीं है, लेकिन वो भी पहले एक कथक डांसर थे और उन्होंने अटैम्प किया था बैली डांस को, तो लाइक मेरे साथ भी एग्जैक्ट यही सीन था। जिनके मूव अच्छे लगते हों तो वो तो आई थिंक वर्ल्ड में आई थिंक वो सिर्फ एक ही बंदी है, वो इंडिया की फीमेल डांसर है, बैली डांसर हैं महर मलिक, फिनोमिनल परफॉर्मर हैं, उनके मूव, उनकी कमर, उनकी आंखें, उनके हाथ की स्नेक लाइंस, आई वाज लाइक बंदी कुछ कर रही है यार, उसके मूव बहुत मज़े के होते हैं, तो वो आंखों से बहुत अच्छा बड़ा मज़े वाला खेलती हैं, किसी को आंखों से बंदा कनेक्ट करता है ना अपनी ऑडियंस को, कि ऑडियंस को पकड़ लेना कि चाहे 10 लोग हों या 100 लोग हों, उनकी ना बस उनकी अत्यथ उनके गर्दन में रस्सी डाल के उनको पकड़ा हुआ है या अपनी आंखों से ऐसा कनेक्ट किया हुआ है ना कि वो बस एक ही जगह पे देख रहे हैं।
1: बैली डांसर के मुताबिक उन्होंने मुल्क के कई नामवर फनकारों के साथ काम कर लिया है, तहम उनकी ख्वाहिश है कि अब वो किसी रोज मैडम रीमा के साथ भी परफॉर्म कर सके। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मिशन कम कीमत में अच्छा जानवर घर लाने का होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि जानवर खूबसूरत भी हो और कीमत भी मुनासिब हो। ऐसे में मुल्क भर में मवेशी मंडियां लग चुकी हैं, जहां खरीदारों का रश बढ़ गया है, जबकि व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भावताव भी शुरू हो चुका है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है, जहां 2 लाख से ज्यादा जानवरों की खरीदो फरोख्त का अंदाजा लगाया जा रहा है। शहरी जोग दर जोग मंडी का रुख कर रहे हैं और अपने मन पसंद जानवरों की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। सैकड़ों एकड़ पर फैली इस मवेशी मंडी में मुल्क भर से मुख्तलिफ नस्लों के जानवर लाए गए हैं, जिनमें सिब्बी, ब्राह्मण, साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इमदाद अली सिब्बी बलूचिस्तान से 80 जानवर लेकर मवेशी मंडी पहुंचे हैं। वो कहते हैं फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसका बराह रास्त असर जानवरों की कीमतों पर भी पड़ा है।
2: सिब्बी से तकरीबन 80 जानवर लेकर आए हूँ, हर साल यहाँ जानवर लेकर आता हूँ, तो इस साल भी हम लेकर आए, लेकिन इस साल थोड़ा सा महंगा ही अगर देखें तो, जैसे पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। अच्छा, इंतजाम तो मंडी के ये हैं कि हमें पानी फ्री मिलता है, तो थोड़ा ये बेनिफिट अच्छा है हमें, और जनरल ब्लॉक के ये है कि पैसे

0: में नहीं देने होते हैं तो ये थोड़ा सा हम ये कि थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं इंतजामिया वाले, तो चलो चल जाते हैं। अब बाकी रही बात कारोबार की, तो देखें यहाँ व्यापारी आते हैं, खरीदार आते हैं, वो जानो ज्यादातर सिविक ही पसंद करते हैं, साहिवाल के, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, लेकिन वो सब कहते हैं कि रेट ज्यादा है। भाई रेट ज्यादा है आप सब जानते हैं। देखिये चलो इंतजामिया कॉपरेट कर रही है, वो चारा जो है जितना ला सकते हम लेकर आए, बाकी यहाँ से हमें खरीदना होता है, पानी फ्री दे रहे हैं, लाइट वगैरह है, तो चलो समझ में आता है। अच्छा अगर हम बात करें तो देखिये खरीदार जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, उनको सभी के जानवर भी चाहिए होते हैं, उनको फिर वो साहिवाल नस्ल के चाहिए चाहिए होते हैं, देसी चाहिए होते हैं। तो हमारे पास जो सभी के जानवर हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो पसंद किए जाते हैं, शहर कैद के लोग जो पसंद करते हैं, उनकी हाइट कुछ ज्यादा होती है।
1: मंडी का रुख करने वाले एक शहरी इमरान ने हमें बताया कि वो 3 लाख रुपए लेकर घर से निकले हैं, तहम अभी तक उन्हें जानवर नहीं मिल सका। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही इस रकम के इवज जानवर खरीदने में कामयाब हो जाएंगे।
2: 3 लाख रुपए अपने साथ लेकर आया हूँ, तो ये है कि अभी तो जानवर की तलाश जा रही है और पिछले साल की निस्बत जो है इस बार थोड़े रेट हाई है, जाहिर सी बात है पेट्रोल महंगा हुआ है। अभी तक तो जानवर की तलाश मेरी जारी है, कोशिश है कि मैं अपने रेंज के हिसाब से जानवर ले लूंगा, भाव ताव मेरा तो अभी तो जारी है, बार्गेनिंग करने में लगा हूँ, और उम्मीद है कि है ना मान जाएंगे, क्योंकि इसी मंडी से हमारे मोहल्ले के भी काफी है ना एरिया के लोग काफी है ना जानवर लेकर आए और मुनासिब दामों पे लेकर आए, मैंने जब ही इस मंडी का रुख किया है।
1: एक और शहरी अस्जिद भी शिकवा करते हैं कि जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं।
3: मंडी में आए हुए हैं जानवर देखने के लिए और बड़ा रश लगा हुआ है, हमेशा की तरह जानवर अब भी महंगा है। भाई वो दौर पुराने होते थे जो सस्ते जानवर मिल जाते थे, अब तो हाथ रखो जानवर तो 8 लाख 9 लाख, कोशिश कर रहे हैं काफी देर से तो घूम रहे हैं लेकिन अपने मतलब का जानवर नहीं मिल रहा, कुछ एक आध जानवर मिले अपने मतलब के लेकिन उस हिसाब से वो चीज नहीं है। अब हमें चाहिए जानवर जो 8 लाख का कह रहे हैं, हमें वो 4 लाख में चाहिए। अब कोशिश करते करते पूरी मंडी घूम गए, बाकी इंतजाम बड़े अच्छे किए हैं भाई। पुराना दौर याद आता है 2010-11 वाला, जानवर पे हाथ रखते थे तो भाई लाख रुपए में आपको एक अच्छा सा 7-8 मन का जानवर मिल जाता था, और जब लेके आते तो बच्चे भी खुश घर वाले भी खुश। अब तो बस देख घूमते रहो आपको 1 मन का 2 मन का जानवर भी जो है ना वो लाखों रुपए में मिलेगा, जो आपकी आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये जानवर। अब लगे हुए ढूंढ रहे क्या करें, अगर मिलता है ठीक है नहीं तो अब आएंगे, अभी तो खैर टाइम है, खैर अब घूम रहे हैं दुआ करें मिल जाए।
1: दूसरी जाने तर्जुमान मवेशी मंडी साकिब आलम ने बताया कि रवां वर्ष 2 लाख से ज्यादा जानवरों की मंडी में आमद मुतवक्के है, जबकि साथ ही उन्होंने कहा कि शहरियों के लिए मंडी में पार्किंग बैंकिंग समेत दीगर सहूलियात मुयस्सर की गई है।
4: इस साल मुमकिन तौर पे जानवरों की आमद जो है वो 2 लाख से जायद मुतवक्का है, 1.25 लाख के करीब जानवर इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के हमने मौसर इंतजाम किए हैं, शहरियों की सहूलत की अगर बात की जाए तो इनको महफूज पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है, इसी तरह से यहाँ पे फूड स्ट्रीट कायम की गई है, इस मवेशी मंडी में बैंकिंग की सहूलत भी मौजूद है, अगर कोई कैश लेके नहीं आना चाहता है तो यहाँ पे वो डिजिटल बैंकिंग के जरिए भी जो है अदायगियां कर सकता है।
1: साकिब आलम के मुताबिक मुल्क भर से आने वाले जानवरों की मंडी में आमद से कबल उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके बाद ही जानवरों को मंडी में आने की इजाजत दी जाती है।
4: साथ ही साथ अगर आप जानवरों के हवाले से बात करते हैं तो कोई भी जानवर जो है वो बगैर वेटनरी डॉक्टर्स की चेकिंग के बगैर यहाँ पर नहीं आ सकता। जो हमारा मार्शलिंग एरिया है वहाँ पर वेटनरी की टीम मौजूद है जो कि जानवरों को चेक करती है, उसके बाद ही जानवर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर आते हैं।
1: तर्जुमान के मुताबिक व्यापारियों को उनके जानवरों के लिए मुफ्त पानी और साथ ही मुनासिब कीमत में चारा भी फराहम किया जाता है। SBS उर्दू के लिए ये रिपोर्ट पाकिस्तान से एहसान खान ने पेश की।
5: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
6: जी सामईन, तो इसके साथ ही आपको लिए चलते हैं नशरियात के तीसरे और आखिरी वक्फे की जानिब, जिसके बाद खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया की किस्त में जानेंगे कि बढ़ती महंगाई में किस तरह अपने माली इंतजामात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम इस छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
5: दुनिया भर के लोगों की कहानियां देखिए SBS के अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री शो डेटलाइन पर। डेटलाइन हर मंगल को 9:30 बजे शब या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे 7 दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए। SBS फूड चैनल 33 पर आपके लिए लेकर आता है मुकामी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन के जरिए दुनिया भर के खुश जायका खानों का लुत्फ। SBS फूड 24 घंटे में

0: किसी भी वक्त चैनल 33 पर। जिलुरु स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट ऑस्ट्रेलियन आइन में मुल्क के कदीमी बाशिंदों के हक को तस्लीम करने की मुहिम का हिस्सा है। तफसील के लिए sbs.com.au/jiluru-statement पर जाइए।
1: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की बराहे रास्त नशरियात आप सुन रहे हैं SBS साउथ एशियन पर और मैं हूं आपकी मेज़बान वरदा वक़ार। सामईन नशरियात के इस हिस्से में कुछ बात करते हैं माली इंतजामात की और बढ़ती हुई महंगाई की, जहां इस वक्त टैक्स ज़ेर बहस हैं, जहां इस वक्त बजट ज़ेर बहस है, जहाँ इस वक्त बजट में की गई कटौतियाँ ज़ेर बहस हैं, वहीं ये बात भी ज़ेर बहस है कि वो अफराद जो रहन पे रहते हैं या वो अफराद जिनके घर रहन पर हैं या वो अफराद जो गाड़ियों की इकसात अदा करते हैं, वो किस तरह अपने माली इंतजामात को बेहतर बना सकते हैं, जबकि शरह सूद में भी इजाफा हुआ है। बहुत से अफराद इस बात से लाइल्म हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप माली मुश्किलात से दो चार हैं तो आपको बैंक या क्रेडिट फराहम करने वाले इदारे से माली मुश्किलात के इंतजामात का मुतालबा करने का हक है, जबकि मुशीरों को सही मालूमात और अमली इख्तियारात फराहम करने के लिए किसी शख्स की माली सूरत हाल को समझने की ज़रूरत होती है। मज़ीद तफसील सुनिए खुश आमदेद ऑस्ट्रेलिया की इस हफ्ते की किस्त में।
0: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
1: सामईन, ऑस्ट्रेलिया में रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें दबाव में हैं क्योंकि मौजूदा अमेरिका ईरान जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल हो रही है। बहुत से ऑस्ट्रेलियन खानदानों के लिए RBA के इस माह कैश रेट बढ़ाने के फैसले के बाद ये दबाव दुगना हो गया है। लोग ईंधन पर ज्यादा अदायगी कर रहे हैं और साथ ही बढ़ते हुए ग्रोसरी बिल्स, किराया, रहन और दीगर जरूरियात को भी संभाल रहे हैं। खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया फ्यूल इन फोकस की इस किस्त में हम उन मुफ्त और आजादाना खिदमात पर नजर डालते हैं जो लोगों को माली दबाव को संभालने में मदद दे सकती हैं। मेलबर्न के रिहायशी इम्तियाज अहमद IT में फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन वो अपने खानदान की किफालत के लिए वीकेंड और शाम को टैक्सी और राइड शेयर गाड़ी भी चलाते हैं।
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: इम्तियाज अहमद कहते हैं ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें मसले का सिर्फ एक हिस्सा हैं। कम मुसाफिर, ज्यादा प्लेटफॉर्म कमीशंस और रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात ड्राइवर्स के लिए गुजारा करना मुश्किल बना रहे हैं।
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: इम्तियाज अहमद अब नेशनल डेथ हेल्पलाइन से राब्ता करने पर गौर कर रहे हैं। ये एक मुफ्त, आजाद और खुफिया सर्विस है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में दस्तयाब है। ये हेल्पलाइन माली दबाव का सामना करने वाले अफराद को माली मुशीरों से जोड़ती है जो उनके हुकूक की वजाहत कर सकते हैं और उनके इख्तियारात पर बात कर सकते हैं। नेशनल डेथ हेल्पलाइन की विकी स्टाफ कहती हैं अब बहुत से लोग अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा ईंधन और खुराक जैसी जरूरी अशिया पर खर्च कर रहे हैं, जिससे दीगर अहम अखराजात के लिए कम रकम बचती है।
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील और एक नया शो और एक नई शाम में एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं सबसे पहले उसके बारे में बता दें आपको. तो कल शाम जैसे कि आप जानते हैं कि फेडरल बजट की घोषणा हुई थी, तो उसी पर हमारी पहली रिपोर्ट है. आज के शो में हम फेडरल बजट 2026 के बड़े फैसलों, आरबीआई गवर्नर और अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों और सुधारों की कठिन राह पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा. इसके बाद होगी इंडिया रिपोर्ट जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें और अंत में कैनबरा से एक खास मुलाकात संतोष गुप्ता जी के साथ जिन्होंने 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी. ये रिपोर्ट दो भाग में होगी जो हम आज आपको सुनाएंगे. तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी और उससे पहले हम सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश. बुधवार 13 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. डिसेबिलिटी समर्थकों ने फेडरल बजट में NDIS यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है. इन बदलावों के तहत 2030 तक 1,60,000 से अधिक लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करने की योजना है. इन बदलावों का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में लगभग $38 बिलियन की बचत करना है. इसके साथ ही एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसेस भी लागू किया जाएगा. डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क की चेरी बेलोसिस ने SBS को बताया है कि इस बदलाव से बनने वाले गैप को भरने के लिए एक मजबूत और उपयुक्त ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे स्किल्ड प्रवासियों को फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन प्रोग्राम के बदलावों से फायदा मिलने की उम्मीद है. सरकार के अनुसार 1,85,000 परमानेंट माइग्रेशन प्लेसेस में से 70% से अधिक जगह स्किल्ड वर्कर्स के लिए रखी गई हैं. इनमें से 2/3 से ज्यादा वीजा उन प्रवासियों को मिलेंगे जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं. वहीं ऑफशोर यानी बाहर से आवेदन करने वाले स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए केवल 55,000 जगह आरक्षित की गई हैं. बजट पेपर्स के अनुसार ये बदलाव नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं. साथ ही रिवाइज पॉइंट्स टेस्ट में युवा, हाईली स्किल्ड और बेहतर एजुकेटेड माइग्रेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी. फेडरल बजट में ये भी पुष्टि की गई है कि 2025-26 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन का आंकड़ा 2,95,000 रहेगा जो पिछले साल के बजट फोरकास्ट से 35,000 ज्यादा है. 3 साल पहले न्यू साउथ वेल्स के एक नर्सिंग होम में एक 95 वर्षीय महिला की मौत के बाद अब डिमेंशिया पेशेंट्स की देखभाल और एग्रेसिव घटनाओं पर प्रतिक्रिया को लेकर न्यायिक जांच शुरू की जाएगी. मई 2023 में यलम्बी लॉन्च में तत्कालीन सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट द्वारा टेजर चलाने की वजह से क्लेयर नोलैंड की मौत हो गई थी. उन्हें डिमेंशिया के लक्षण थे, वो गिर गईं और

उनके सिर में गंभीर चोट लगने से दिमाग में खून बहने लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 2024 में सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट को मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया था और बाद में उन्हें 2 साल के गुड बिहेवियर बॉन्ड की सजा सुनाई गई। विक्टोरियन सरकार ने मेलबर्न के हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए $15 मिलियन की घोषणा की है। ये फैसला हाल ही में हुए कई आर्सन अटैक्स की घटनाओं के बाद लिया गया है। इस फंड का उपयोग सिक्योरिटी कैमरास, दरवाजों, अलार्म्स और फायर सप्रेशन सिस्टम्स को अपग्रेड करने में किया जाएगा। वेन्यूज को ये विकल्प भी दिया जाएगा।

0: Hits from Home.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी खरीद कम करना, ट्रेड डेफिसिट घटाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील भी की थी। ये था आज का न्यूज़।

0: Hits from Home.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: टैक्स बदलाव और नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में सुधार के जरिए 35 अरब डॉलर की बचत शामिल है। नमस्कार, मैं हूं वृषाली जैन और अब फेडरल बजट 2026 पर ला रही हूं वो अंश जहां चर्चा होगी कैसे लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाले बजट के रूप में पेश करना चाहती है। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलॉक ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक खर्च से महंगाई बढ़ सकती है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो सकता है। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स अपने 5वें बजट को पेश करने की तैयारी के समय से संकेत दे रहे थे कि सुधारों की डगर कठिन ही होगी।
3: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
2: वित्त मंत्री कैटी गैलेगर ने भी चैनल 7 के कार्यक्रम सनराइज पर इसी तरह का संदेश दिया था।
4: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
2: अब बजट पेश किया जा चुका है तो हमें साफ तौर पर पता चल गया है कि ये सुधार कैसे दिखेंगे। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने संसद से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध कीमतों को बढ़ा रहा है, आर्थिक विकास को धीमा कर रहा है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।
3: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
2: उन्होंने कहा कि इसीलिए ये बजट ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक तेल संकट से बाहर निकालने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो ज्यादा लोगों के लिए काम करे।
3: The core of this budget is an economic strategy with 5 main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
5: Yeah.
3: And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
2: युद्ध के असर से निपटने में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मदद करने की योजना के तहत ईंधन सुरक्षा पैकेज भी शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने की थी।
3: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centerpiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
2: ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से राहत देने के लिए और अधिक टैक्स कटौतियों की घोषणा की गई है।
3: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
2: और जैसा कि वादा किया गया था, कई हफ्तों की अटकलों के बाद कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने टैक्स व्यवस्था में बदलावों की पुष्टि की है। उनका कहना है कि इससे आवास व्यवस्था सभी के लिए अधिक निष्पक्ष बन सकेगी।
3: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year.
5: Yeah.
3: And we're replacing the 50%

0: capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trusts from July the year after.
1: रक्षा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े खर्च वाले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं।
0: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefits scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
1: कोषाध्यक्ष जिम चामस का कहना है कि नया प्रोडक्टिविटी पैकेज अधिक निवेश आकर्षित करने और उसे अर्थव्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है ताकि अधिक लोगों के जीवन स्तर और वेतन में सुधार हो सके. साथ ही कौशल आकलन और पेशेवर लाइसेंस प्रक्रियाओं को तेज किए जाने के बाद हर साल अतिरिक्त 4,000 प्रवासी ट्रेड वर्कर्स को कार्यबल में शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी. हालांकि अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलक की चेतावनियों के बाद लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाला बजट बताने पर जोर दे रही है. उनका कहना था कि अत्यधिक खर्च महंगाई को बढ़ा सकता है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा कर सकता है. कोषाध्यक्ष का कहना है कि बजट में 63.8 अरब डॉलर की बचत का प्रावधान किया गया है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के खर्च में बदलावों से आएगा.
0: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
1: कोषाध्यक्ष जिम चामस का ये भी कहना था कि इस वर्ष के बजट में किए गए फैसले आवश्यक हैं.
0: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
1: SBS News से डेबोरा ग्रॉक की इस खबर को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने.
2: आपने अभी सुनी वृषाली जैन की रिपोर्ट फेडरल बजट 2026 से जुड़ी. अगर आपको ऐसी हमारी कोई भी रिपोर्ट फिर से सुननी है या आप से मिस हो गई है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi. इस रिपोर्ट से पहले हमने आज का सवाल पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं, और दो मैसेजेस आए हैं और बड़े मज़ेदार मैसेजेस हैं क्योंकि दोनों ने लिखा है कि उन्होंने कितनी बार ये मूवी देखी है. नितिन लिखते हैं कि मैंने 17 बार हम आपके हैं कौन मूवी देखिए और मैं इसे कई बार और देख सकता हूँ. वहीं हिरेन लिखते हैं कि मैंने कभी अलविदा ना कहना ये मूवी देखी है पूरे 50 बार और ये उनकी सबसे पसंदीदा मूवी है. 04397997667 पर आप भी लिख भेजिए कि वो कौन सी मूवी है जो आपकी बहुत पसंदीदा है और शायद टीवी पे आए या आप उसको इंटरनेट पे देखना चाहें तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको फिर से देखने में हिचकिचाएंगे नहीं. 04397997667 हमारा नंबर है. जब तक आपके मैसेजेस आते हैं एक एड ब्रेक लेते हैं और एड ब्रेक से वापस आकर आपको सुनाएंगे भारत की कुछ खास खबरें इंडिया रिपोर्ट में.
3: NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं. देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर.
4: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
5: SBS South Asian brings you close.

0: Closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
1: Inside, SBS ka puraskrit current affairs. ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
2: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes. So you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
3: SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एड ब्रेक के बाद. और एड ब्रेक से पहले जो हमने एक आपको मैसेज पूछा था उसका एक और जवाब आया है. और क्यूरी से मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि कभी हाँ कभी ना, आई मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी 20 times एंड आई लव इट. आप भी अपना मैसेज भेजिए कि आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है. अभी तक हमें कभी हाँ कभी ना, कभी अलविदा ना कहना, और हम आपके हैं कौन, इनके जो फैंस हैं उन्होंने मैसेज करा है. 04397997667 हमारा नंबर है. आपके जब तक मैसेजेस आते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं इंडिया रिपोर्ट, जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें.
5: भारत की अध्यक्षता में कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है. 2 दिनों तक नई दिल्ली में चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के चलते चीनी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे. वैसे बैठक में सदस्य देशों के अलावा साझेदार देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस बारे में बताते हैं.
6: इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 14th and 15th May 2026. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegations from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20. Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system.
5: Pradhanmantri Narendra Modi Sanyukt Arab Amirat yani UAE ke daure par jane wale hain. Iske alawa ve 4 European deshon ke daure par bhi jayenge. UAE ke daure ko Bharat ki urja suraksha ke liye mahatvapurna bataya ja raha hai. रणधीर जायसवाल इस दौरे को अहम बताते हुए कहते हैं,
6: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का वो संयुक्त अरब अमीरात का होगा. जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा सुरक्षा बहुत अहम एक उसका भाग्य है. और इस दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी. जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें, साथ ही साथ जो व्यापार के मुद्दे पे और निवेश के मुद्दे पे भी किस प्रकार का सहयोग हो सकता है दोनों देशों के बीच में और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है.
5: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सोना न खरीदने जैसी 7 अपीलें की हैं. सोना पर आयात शुल्क भी सरकार ने बढ़ा दिया है. इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है. विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था की कमजोरी से जोड़कर देख रहा है. रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% करने पर किसान संगठनों ने भी सवाल उठाया है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति बताई जाए.
7: आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए वो भी करेंगे, लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं.

0: पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और आने वाले समय में कुछ महीनों में या एक साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें।
1: प्रधानमंत्री की अपील का उनकी पार्टी भाजपा ने बचाव किया है। भाजपा इसे एहतियाती कदम बता रही है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहते हैं,
2: उस अर्थव्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं जो आज पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। जहां यूपीए के समय में इन्फ्लेशन 10 से 11% होता था, आज इन्फ्लेशन की कोई बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं लगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदिए, कम से कम एक साल तक विदेशी यात्राओं पे मत जाइए, जिससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम ना हो। और ये कोई मूलभूत जरूरत नहीं आम आदमी की हो सकती है।
1: प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। खासतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोल रहे हैं। गौरव भाटिया पलटवार करते हुए कहते हैं,
2: सुन ले राहुल गांधी, वो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात करते हैं, एक एक बूंद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रगों में है खून की, वो देश हित और भारत के लिए। कॉम्प्रोमाइज कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी धरती पे जाके जो ताकतें भारत विरोधी हैं उनसे बातचीत करता है, षड्यंत्र रच।
1: पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेरने वाले राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर इस बारे में हुई बैठक में शामिल भी हुए। उन्होंने योग्य उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी मुहैया न करने का आरोप सरकार पर लगाया। चयन समिति को औपचारिकता बनाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में हुई बैठक में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। और अब बात नीट पेपर लीक की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। नीट यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
3: ये बार बार हो रहा है, ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, मुझे समझ में ना। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और कोई इसको ध्यान नहीं देना दे रहे हैं। इससे पूरे हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को ये लोग खराब कर रहे हैं।
1: आरोपों के बाद परीक्षा को संचालित करने वाली एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात एनटीए ने कही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील। और आगे पढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं। और किसी ने लिखा था, हम आपके हैं कौन, किसी ने कहा कभी अलविदा ना कहना, और कभी हाँ कभी ना। अब दो जो नए मैसेजेस आए हैं, सुरेंद्र चावला जी क्रैनबर्न से लिखते हैं कि देवानंद की मूवी शराबी उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें वो कई बार देख चुके हैं। और एक और मैसेज आया है ऋषि शर्मा का कैनबरा से, वो लिखते हैं कि शोले आई थिंक ये न जाने कितने लोगों की फेवरेट होगी कि शोले मूवी वो जब भी आती है वो फिर से देखते हैं। तो शराबी एक नई मूवी का नाम है जो मेरे लिस्ट में है, मैंने नहीं देखी है, मुझे लगता है बाकी मूवीज़ देखी हुई हैं। और इस सूची में मैं अगर अपनी पसंदीदा मूवी जोड़ूं तो दिल चाहता है जो आई थी और उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी और तीन दोस्तों की जो ये कहानी थी वो मुझे बहुत पसंद है, और शायद इसलिए भी क्योंकि आमिर खान मुझे बहुत पसंद है तो वो मूवी मुझे बहुत पसंद है। और आप ही बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, 04397997667 पर अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिए। और मुझे लगता है आज बहुत लोगों को बहुत सारी फिल्मों का आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये भी देखते हैं जो हमारे बाकी लिसनर्स देखते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का 04397997667 पर आपकी फेवरेट मूवी जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं। एड ब्रेक के बाद आपको वापस मिलता हूँ, सुनते रहिए SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील।
5: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
6: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
7: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
6: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर। चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगहें, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे।
8: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
6: SBS Food के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS Food पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं।
9: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
6: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं।
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, मेरा नाम है नबील। और आज मैसेजेस की भरमार हो गई है, हमने आज शो के शुरुआत में पूछा था और बीच बीच में भी कि वो कौन सी एक मूवी है जो आप फिर से देख सकते हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और सब अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम बता रहे हैं। और जो अभी अभी तीन मैसेजेस आए हैं उनको पढ़ देता हूँ मैं। व्हीलर्स हिल से पीयूष जी लिखते हैं कि 3 इडियट्स उनकी सबसे फेवरेट मूवी है। कमल जी सिडनी से लिखते हैं रहना है तेरे दिल में, वो कई बार दे सकते हैं। और जय श्री कृष्णा, उन्होंने हमें मैसेज भी किया है। और इसके साथ मेलबर्न से अली हमजा वो कहते हैं कि लैला मजनू उनकी पसंदीदा मूवी है। तो आप भी बताइए 04397997667 पर कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और शो के अंत में मेरा मन है कि आज जितनी भी मूवीज़ के सजेशन आए हैं एक वो लंबी सी लिस्ट एक बार फिर से आप सबके लिए पढ़ ली जाए, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि लोगों की क्या क्या पसंद है और कौन कौन सी फिल्में जो आपने नहीं देखी वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं या एक बार शुरुआत कर सकते हैं उसको देखने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी जो आखिरी रिपोर्ट है शो की वो आपके लिए प्ले करेंगे। ये जो रिपोर्ट है दो भागों में है, आज हम मुलाकात कर रहे हैं कैनबरा में संतोष गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने वहाँ

0: 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी। आइए अनीता बरार के साथ उनकी इस बातचीत में जानते हैं कि अब हिंदी को लेकर वहां आगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, ये रिपोर्ट दो भाग में है, आइए सुनते हैं इसका पहला अंश।
1: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। जानते हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के इस वर्ष फरवरी में 20 वर्ष पूरे हुए हैं और अब उम्मीद हो चली है कि हिंदी एक विषय के तौर पर प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के करिकुलम में शामिल हो सकती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कैनबरा से संतोष गुप्ता जी, जिन्हें हाल ही में ACT आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट अवार्ड मिला फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कम्युनिटी सर्विस के लिए, जिसमें हिंदी लैंग्वेज स्कूल की स्थापना और अन्य संगठनों के साथ उनके काम और अब उनका प्रयास कि हिंदी स्कूली पढ़ाई में शामिल हो जाए। तो स्वाभाविक रहा उनसे ये पूछना कि कैनबरा में हिंदी स्कूल की आवश्यकता उन्हें कब और क्यों महसूस हुई, तो वो बताते हैं।
2: अनिता जी, जब मैं जो है कैनबरा आया 2005 में और मेरा बेटा उस समय केवल एक साल का था, तो मेरे को लगा कि अंग्रेजी तो मेरे बेटे की अच्छी हो जाएगी, तो हिंदी का साथ में कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के और जो चीजें हैं उनको कैसे उसको उसके साथ ला सकते हैं। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर एक हिंदी स्कूल की बहुत ही आवश्यकता है। तो उस समय हम लोग ने फिर काफी लोगों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है हिंदी समाज ऑफ कैनबरा, और उसी के साथ फिर हमने जो है कैनबरा हिंदी स्कूल की शुरुआत की।
3: तो आसान था शुरू करना, कुछ चुनौतियां तो आई होंगे कि सब लोग आप की तरह कैसे सोचने लग गए?
2: जी, चुनौतियां इस समय बहुत थी क्योंकि ये यहाँ पर शुरुआत थी और किसी को भी ऐसी जो है चीजों की मतलब पता भी नहीं था। तो कोई भी जैसे स्कूल शुरू करना है तो उसके लिए हमको ACT कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। तो उसके साथ, क्योंकि जब आप किसी स्कूल में जैसे हायर करते हैं क्लासरूम्स, तो हमको क्लासरूम्स हायर करना था कोई अच्छी जगह। उस समय कैनबरा में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग नहीं थे, वॉलेंटियर्स थे, उनको दिखाना कि भाई आप आइए और हमारे साथ जुड़ के हम बच्चों को जो है 5 साल से 17 साल तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। तो उस समय काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोई भी स्कूल में क्लासरूम करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, और वो सारे जो खर्चे हैं और टीचर्स को है रूम हायर करने का है, तो काफी चुनौतियां थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कारवा बहुत बढ़ता गया और आज हमको बड़ी खुशी है कि हमने 20 साल पूरे किए।
3: जी, जो आपने समुदाय के लिए काम किया इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। अब आप स्कूलों में बाकायदा पढ़ाई की तरह भी इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में भी आ जाए, तो उसकी बात भी मैं करती हूँ। लेकिन देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं आत्रेय जो इस समय 9वीं क्लास में है। तो आत्रेय, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदी के साथ में जुड़ तो गए हैं, लेकिन क्या था जिससे आपको लगा कि हिंदी सीखनी चाहिए?
4: मेरा पहले याद है कि मैं 3 साल का था और मैं दादा दादी बात कर रहे थे पापा से, और उसके बाद मेरे को नहीं आता था हिंदी उस समय, तो मैं पापा को बोला दादी और दादू क्या बोल रहे हैं। पापा बोले हिंदी में बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं बोला मैं भी हिंदी सीखूंगा। तो 3 साल से मैं 3 साल का था तब से मैं हिंदी स्कूल में जा रहा हूँ।
3: तो इसमें सबसे मजेदार बात क्या लगी थी हिंदी सीखने में, और कहाँ पे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज हो रही है?
4: तो पहले साल बहुत कठिन थी, एनी लैंग्वेजेस हार्ड, मात्रा के साथ आधा आधा और सब कुछ के साथ बहुत कठिन लगा। लेकिन मेरे को लगा कि मैं इस ये करके करूंगा क्योंकि मेरे को दादी दादू और सब लोग से बात करना है।
3: वाह, क्या बात है। तो मकसद आपका बात करना ही रहा, घर वालों से जुड़ना रहा, या उसके अलावा भी कोई?
4: मेरा घर वालों हुआ था, और हिंदी जैसे बाहर है तो सीक्रेट लैंग्वेज बन जाता है क्योंकि सबको हिंदी नहीं पता, तो आप कुछ भी बोल सकते हिंदी में, आपके घर वाले को बाहर कुछ बोलना है।

0: कि यहां मत जाओ या इससे मत बात करो, आप बोल सकते हैं।
1: हाँ, एक हथियार बन गया आपके लिए कि तीर से कोई
0: हाँ
1: बात कर ली तो घर में आप
0: हाँ
1: हिंदी बोलते हैं।
0: हाँ इंग्लिश और हिंदी का दोनों का मिक्स है।
1: अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें कहीं पे क्या कुछ झिझक है हिंदी सीखने की, या कहीं लगता है कि नहीं ये नहीं सीखनी, कोई और भाषा सीखनी है?
0: तो मैं कैनबरा के पब्लिक स्कूल में सीखा हूँ, प्राइमरी स्कूल। तो बहुत दे लोगो है कि दे वांट टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज।
1: हाँ,
0: तो एंड आई वुड थिंक इन कैनबरा हिंदी इज अ वेरी कोर पार्ट आई हैव सीन। तो आई
1: अच्छा,
0: थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वेरी इन इफ इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द पब्लिक स्कूल्स, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, नॉट ओनली टू द हिंदी कम्युनिटी बट टू द वाइडर कम्युनिटी। दे'ल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, एंड इट्स नॉट
1: मतलब
0: जस्ट अबाउट लैंग्वेज, यू विल ऑल्सो टीच कल्चर एंड ट्रेडिशंस, सो वी विल अंडरस्टैंड इंडिया एज अ होल मोर।
1: तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या कोई खास ऐसा पार्ट है कल्चर का जो आपको लगता है कि ये सबसे अलग है हमारा?
0: तो फेस्टिवल्स लाइक होली एंड दिवाली आई हैव

0: Hits from Home.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं जिन्होंने भेजा है अपनी फेवरेट मूवीज़ के बारे में कि उनको कौन कौन सी मूवी पसंद हैं। तो एक मैसेज जो आया है एक है राजेंद्र वोरा जी क्रेगी बर्न से, वो लिखते हैं कि 2 बीघा ज़मीन ये उन्हें बहुत पसंद है और ये कई बार देख सकते हैं। चेतन शाह जी लिखते हैं कि आई हैव सीन परिचय एंड छोटी सी बात मोर देन 5 times एंड आई हैव सीन साउंड ऑफ म्यूजिक मोर देन 10 times। तो ये शायद एक दो नए नाम हैं जो हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक और मैसेज आया है जो लिखती है, हाय आई एम नेमी, माई फेवरेट मूवी इज टार्जन द वंडर कार और मैंने इसको लगभग 25 बार देखा है। रणधीर जी लिखते हैं कि तनु वर्ड्स मनु बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। और एक और मैसेज आया है ब्रिस्बेन से, सकावत इमन, माफ़ करिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मेरी फेवरेट मूवी है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और इसमें इस मूवी को मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार देख सकता हूँ। चलिए आप भी अपने मैसेजेस भेजते रहिए 0439-799-767 पर। आगे बढ़ेंगे, एक गाना प्ले करेंगे और फिर एड ब्रेक और फिर शो की जो एक आखिरी रिपोर्ट था उसका दूसरा भाग हम आपके लिए प्ले करेंगे।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एड्स, कुछ एड्स। एड ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद वापस आके कुछ गाने और अनीता जी की रिपोर्ट का एक आखिरी अंश।
1: अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्रों से लेकर क्लासिकल कल्ट फिल्मों तक, विश्व स्तरीय नाटक से लेकर गुदगुदाने वाली हास्य फिल्मों तक, देखिए SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं। NITV पर जानें उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर।
3: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
4: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
0: SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और अब जो हमने अनीता जी की रिपोर्ट आपके लिए प्ले करी थी कुछ देर पहले, उसका दूसरा और आखिरी अंश सुन लेते हैं, जिसमें बात हो रही है संतोष गुप्ता जी से। और उन्होंने वहाँ 20 साल पहले कैनबरा में हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी, उसी पर प्रस्तुत है अनीता जी की ये रिपोर्ट जो दो भाग में थी। आइए सुनते हैं इसका दूसरा और आखिरी अंश।
5: SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार और आज हम बातें कर रहे हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के संस्थापक संतोष गुप्ता जी और नवीं क्लास के आत्रेय गोयल जी के साथ में। आत्रेय जी से मैंने पूछा था कि भारत में उनकी पसंदीदा जगहें कौन सी है।
6: मेरे खास पसंद जिस पापा का घर पे।
7: बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं?
6: हाँ, मेरा फेवरेट फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर, आपको पता क्या है वो?
7: और बिना
6: सबटाइटल्स का मेरा पूरा आधा मूवी याद हो गया।
7: अरे वाह, क्या बात है,
8: क्या बात है।
6: मूवी देखते देखते कुछ लाइन बोल देते हैं।
7: अच्छा, एक बात और आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आपने शुरू किया था हिंदी बोलना,
6: मेरे को तो याद है कि पापा के पास फ्लैश कार्ड थे और पूरे हिंदी अल्फाबेट का, तो अ से अनार, तो उससे मैं सीखा था। तो पूरा और अभी भी कुछ शब्द नहीं याद है तो वैसे याद, श और श वैसे याद करता हूँ मैं।
7: क्या बात है, तो यानी बचपन से सीख लेना कितनी अच्छी बात है। और

0: दूसरी भाषा जब आप सीखते हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलती हैं और संपर्क तो बढ़ता ही है। तो संतोष जी, आप किस तरह से अपने समुदाय को इस बात के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं कि हिंदी जो है वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जा सके, तो इसके लिए चुनौतियां क्या आ रही हैं, कैसे आप उनको इसकी तरफ ला पा रहे हैं?
1: अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी जो है बहुत तेजी से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अभी जैसे दो कल्चर, दो कंट्रीज का, हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया का काफी जो संस्कृति कल्चरल डिफरेंस है उसमें जो है पास लाने में जो सांस्कृतिक और या व्यापारिक और जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर एक दूसरे को गठबंधन करना है तो हिंदी जो कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में। और हिंदी का सबसे बड़ा जो चीज है, एक भाषा है जिसके साथ सारे लोग भारत के और भारतीय मूल के जो दूसरे देशों में है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत, तो वो एक केवल हिंदी ही है। बिल्कुल, अगर हिंदी को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो वहाँ की जो जैसे कोई पॉलिटिकल जो वहाँ पे क्या पॉलिटिकल है या सामाजिक जो गतिविधियां हैं और जो वहाँ का जो है इकोनॉमी है उसको जोड़ने, उसके साथ अगर आपको जोड़ना है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को या ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ना है, वो बहुत जरूरी हो गया है। आजकल जैसे जो डीफेट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, यहाँ पे पिछले 6-7 सालों में संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे कि भारत ने भी यहाँ पर जगह जगह ऑस्ट्रेलिया में अपने काउंसलेट्स खोले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने भारत में, और वो लोग जब यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ पर से हिंदी सीख कर जाते हैं। तो आजकल तो मेरे को बहुत आसान हो गया है और लोग बहुत उत्साहित होके केवल स्कूल में, अभी मेरे पास बहुत सारे जो है लोग आते हैं संपर्क करते हैं कि क्या आप बड़ों को भी सिखा सकते हैं।
0: जी, मैं आपसे यही पूछना जा रही थी कि आज के दौर में जो बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक हैं या सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, वो किसी भी सोर्स से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन स्कूलों में उसकी पढ़ाई क्यों आवश्यक है?
1: जैसे कि आप देखिए कि अगर बच्चा जो है शुरू से सीखता है कोई भी
0: जी
1: भाषा तो
0: जी
1: वो उसको बहुत आसान होती है। एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को शुरू से मिलेगी तो उसके लिए हमारा प्रयास है। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी एक सर्वे कराया था लास्ट ईयर, और ये एक चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो गई है।
0: जी
1: उसके बेसिस पे वो लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमको जो है और भाषाओं की तरह हिंदी भाषाओं को भी स्थान देना चाहिए।
0: जी अभी किस स्थिति पर पहुंचे हैं आप?
1: अभी सर्वे का जो हमारा रिजल्ट्स आए हैं उनको वो लोग थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि किस स्कूल में हिंदी की शुरुआत हो। सर्वेक्षण का जो हमारा परिणाम है उसको देख रहे हैं।
0: तो क्या उम्मीद है, कब तक ये हो सकता है?
1: देखिए, मेरे को तो बहुत उम्मीद थी कि शायद इस साल ही हो जाना चाहिए था,
0: हाँ
1: लेकिन अब जैसे कोई भी योजनाएं होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगले साल से जरूर किसी स्कूल में एक जगह हिंदी शुरू हो जाएगी।
0: क्यों रात्रे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? काफी मिलेंगे लोग पढ़ने वाले, छोटे बच्चे क्या आएंगे?
2: ये क्योंकि स्कूल में आपके विकली में हो जाता है, करिकुलम में है, मैं सीख लूंगा ये थोड़ा देर के बाद। ओ, मेरे को ये अच्छा लगता है, और उसके बाद विलिंगनेस आप लर्न हो जाएंगे।
1: चीज और बोलना चाहूंगा अनीता जी, मैंने देखा है जब यहाँ पर एक नाराबंडा कॉलेज है कैनबरा में, वहां पर हिंदी और भाषाओं की तरह पिछले कई दशकों से सिखाई जा रही है। तो हमारे जो भारतीय मूल के जो विद्यार्थी आते थे वो उन्होंने हिंदी लिया ईयर 11-12 में, क्योंकि वहां पर तो है, लेकिन जो नीचे नहीं है कोई भी प्राथमिक विद्यालय या हाई
0: हाँ
1: स्कूल में हिंदी नहीं है। तो जो अभी आपका पहला प्रश्न से पहले जो था
0: जी
1: उसके लिए, अगर बच्चे को ईयर 11-12 में हिंदी सीखना है तो अगर उसकी जो शुरुआत है वहां पर हो, पूरे कैरिकुलम के साथ हो। जैसे कि अभी जो कैनबरा हिंदी स्कूल है, अभी केवल एक ही विद्यालय है जिसके बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं और वो नारबंदा में ईयर 11-12 में। तो दिस
0: अच्छा
1: एक जो रीजन है हम लोग जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उससे जो नए विद्यार्थी है उनको बहुत अच्छा एक आधार मिलेगा।
0: जी, तो इंतजार करेंगे, ये शुभकामनाएं हमारी रहेंगी। आत्रेय, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
1: और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ SBS और आपका सबसे ज्यादा, ये एक हिंदी के लिए आपका

0: जो समर्थन है, ये सहयोग है, आप जो वर्षों वर्षों से आप हिंदी के साथ और हिंदी की सेवा में जुड़े हुए हैं, और मेरा तो बहुत ही छोटा योगदान है।
1: SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो कुछ मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्लाइड से ब्रजेश जी हैं जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट भेज दी है अपने पसंदीदा मूवीज़ की। वो लिखते हैं, अंदाज अपना अपना, शोले, गोलमाल, हेरा पेरी, हंगामा, हलचल, थ्री इडियट, ये सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो मैं कई बार बार बार देखना पसंद करूँगा। 04397997767 पर आप भी अपना जल्दी से संदेश भेज दीजिए शो ख़त्म होने से पहले और हम उसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ और कोशिश है कि इस गाने के बाद एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आई थी उसको भी आपके लिए प्ले किया जाए। तो 04397997767 पर इंतज़ार है आपके मैसेजेस का। जब तक ये एंजॉय करिए ये गाना।

एस बी एस हिंदी पर आज मेरे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील। एक आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। जफर जी लिखते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी है दिलवाले और माय फ्रेंड ऑफर्स अ फ्री डिनर टू एनी ऑफ अ फ्रेंड इफ़ ही एग्रीज टू वॉच दिलवाले मूवी विथ हम। तो अगर दिलवाले उनके साथ कोई देखने का वादा करता है तो वो डिनर में भी ले जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मूवीज़ के आज रिकमेंडेशन आई और बड़ा मज़ा आया कि सबने अपनी अपनी पसंदीदी मूवीज़ बनाई और इतनी सारी हो गई कि शायद मेरे लिए वो पूरी लिस्ट पढ़ना अब मुश्किल होगा। लेकिन एक आखिरी गाना पीयूष जी का रिक्वेस्ट आया था, उसके साथ ख़त्म करेंगे। फिल्म कुर्बानी मूवी से वो कहते हैं कि आप जैसा कोई गाना प्ले कर दीजिए। तो आपसे मिलूँगा बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया नबील के साथ जुड़े रहने के लिए। SBS हिंदी पर अलविदा और एक खूबसूरत शाम एंजॉय करिए।

0: Dad's hand, DJ.
1: Onde o dia chega aí?

से मीडिया बोले जो मेरे बारे में बातें वो सारी irrelevant. You make me come into my element. Picture you riding the elephant. ऐसे हूँ मैं, wild मेरी imagination ना पागल हो रही है, वो पागल हो रही है in anticipation of precipitation. I बरसेगा बादल, बरसेगा बरसेगा बादल. वो भी एक अरसे से प्यासी, मैं भी एक अरसे से पागल.

0: خمس عبر داس تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بار
1: लड़की शहर में नहीं हो सुंदर हो क्यूट लग रही हो वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो

समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर, सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए जहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा, दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां, इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी, खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी।

वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो, बड़े कम वक्त हो आप नमाज के वक्त पे याद आते हो। अगर आपको ये लगा तो बिल्कुल गलत लगा कि आप खुदा के बाद आते हो, कि आप खुदा के बाद आते हो।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian।

है कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी, शरीफ हूँ।

0: hit.
1: After hit.
0: After hit. This is SBS South Asian.

Get that.

0: SBS South Asian.
1: और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज़।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।